0: तो क्या पर जे स्प्रिंग 436 साहब आप फादर दिस हैं
1: अपन आज इस में 436 स्टैंड बाय दिस हैं दिस इज ट्रैफिक
0: जा
1: जे स्प्रिंग 436 ट्रैफिक 11 o'clock 17 miles south eastbound leaving 12000 to 13000 about 3000
0: जे स्प्रिंग 436 तरह यात्रा कैसा है
1: Happy 582 declare direct for Vixen and maintain 11000.
0: That's a Vixen, you say 11000, it's 582.